दीर्घ आयु गुरसिखी जीवन उच्च विद्या दी दात माता पिता ते वडेरियां दी शुभाग्या पालन दी समत बख्शनी महाराज समूह परिवारां दे कारोबारां विच वाधे करने किरत कमाईयां विच बरकतां पौणियां किरपा करो इलाही हुक्म दी दात बख्श के नदरी नदर निहाल करो।

है खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहना ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो शरदा

हुकम चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन भाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाउर खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तान भेद सुनिया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठसठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुना के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मुहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत सो प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती सन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवहि ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुवै सचियार धवलै उपर।

अपेख है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग अंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग तर्मंग, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवंग प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय, निरसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चिराग है, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रोजी दिहंद है, के राज करहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाय करहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बहेस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अभंग है, मद भार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रभंज, अन गण प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम, अन छिज अंग आसन अभंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस विस अभंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अनास त्रित धर तुरास, आ जान बाहु एक सदाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम चित चरण नाम, अन छिज गात आजिज ना बात, अन झंझ गात अन रंज बात, अन तुट भंडार अन थट अपार, आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म, अन ब्रन अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, खल खंडन है, मह मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ब उबारण है, त्रित के धरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं भर है, सर्वंकार है, सर्व पास्या है, सर्वनास्या है, करुणाकर है, विश्वंग भर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पारते पार है, करुणाकार है, अजपा जाप है, अथपा थाप है,
अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खालकायक है, विश्वंग पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भाव भंजन है, और गंजन है, रिपतापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हर्ताहार है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्मवास है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरं परनासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रीमुल रहीमे चत्तर चक्करवर्ती चत्तर चक्कर भुगते स्वयं भव सुबंग सर्वदा सर्वजुगते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सुवैये सरावग शुद्ध समूह सिदान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा दिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत सीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार हसार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन
मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सोबा तन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन तिर लोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो नात फिरे लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहा सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात साही दसवी कब्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखे सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करियै सब बैरन कौ आज संगरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत भेदा जा को भेवना पावत बेदा ताकाउ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव
निरंकार का चीनत न है, भेव आप आपुनी बुद्ध है, जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर एकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हारे हो, रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट चाह छुवै सकै ना कोई, एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं सरण तिहारी, आप हाथ दैलेहो उबारी, सर्ब ठाउर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सो बराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छै करता, श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल, सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रह हो, जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई, संबत सत्र है सहस पनिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै, भादरव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते, को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत, एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम, एक ना जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहे।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ, ਵਾਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ, ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ, ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ, ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬੱਜ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਤੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਾਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਾਨ ਦੇਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਾਨ ਪਾਵੇ, ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਕਥੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ ਜੀ, ਅਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਨ, ਏ ਆਖਹਿ ਤਾ ਵੇਖਹਿ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ, ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, सत गुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज त्रिसना बहुत नाही बोलना खन्या हो तिखी वाल हुनकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चल है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पाव हे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारा सुख पाव हे कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलाव हे एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वस्या जिन तुर हो लिखिया आया एहो तिन कै मन वस्या जिन तुर हो लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गलां गली किनै ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विन सह जय सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवहो शब्द लाग हो हर स्यो रहो हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए जिया हो मैले बहरहो निर्मल बहरहु निर्मल जियहु ता मैले तिनी जन्म जुवै हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनहु विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहै नाही फिर है ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया जियहु निर्मल बहरहु निर्मल बहरहु ता निर्मल जियहु निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड़ के सोए पहुचै नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु से ते सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जिया हो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रह परनै गुर बिन अवर ना जाने कोए कह नानक सुनहो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो हो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखहो विन सत गुर मुक्त ना पाए आवहो सिख सत गुरु के प्यार हो गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदय तिना समानी पीवहो अमृत सदा रहो हो हर रंग जपहो सारग पानी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछूना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाए कह करता पे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यो लिवलाए कहै नानक आप करता पे हुक्म बुझाए सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाज हो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हार मन वस्या बोल है अमृत बाणी कहै नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हार लिव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारिय मनहु क्यों विसारिय एवड दाता जे अगन मह आहार पहुचावे ओस नो केहो पोहे ना सकी जेस नो अपनी लेव लावे अपनी लेव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक एवड दाता सो क्यों मनहु विसारिय जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जम्या परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपिया विच हो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपिहो जिया हो लाहा खटिहो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहै नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पलै ना पाए हर रस पाए पलै पिया हर रस बहुर ना त्रिसना लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कहै नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भुगो कहै नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखिया पाया कहै नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नित रहो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवरना देखो हो कोई हर बिन अवरना देखो हो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कहै नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचै सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए कहै नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वहो ਸਾਚੈ ਸੁਣ ਨੈਨੋ ਉਪਠਾਏ ਹਾਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵ ਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵ ਹੇ ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਦ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵ ਹੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵ ਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੈ ਘਰ ਗਾਵ ਹੇ ਅਣਦ ਸੁਨੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵੇ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਰ ਹੈ ਮਾਹਾ ਮਾਂਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀ ਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਹੋ ਰਾਮ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ਧੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤਾ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਮ ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੂਲ ਰਸ ਸਾਨ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ ਮਿਲ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸ ਹੈ ਗਣਾ ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਨਾ ਹਰ ਦਰਸਨ ਕਾਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ ਵੈ ਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਦੈ ਮੋਹ ਇਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੈ ਲਈਐ ਹੈ ਖੋਹੇ ਦਈਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵੈ ਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੈ ਸਭ ਨਿਵੰਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਐ ਹੈ ਧਨ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੁੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਂ ਨਨ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਨੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ ਆਸਾੜਤ ਪੰਧਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹੂ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦੁਆ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀ ਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਾਮ ਕੀ ਫਾਸ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖੇ ਆਸ ਰੈਨ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਛਾਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਵਾਣ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ समरथ पुरख अपार, हर मिल नैनो मन लोचदा कर्म मिलावन हार। जिनी सखिए प्रभ पाया, हों तिन कै सद बलिहार, नानक हर जी मया कर। शब्द सवारन हार, सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार। भादोए भरम भुलानिया, दूजै लगा हेत लख सिगार बनाया का, लख सिगार बनाया कार जनाही केत। जित दिन देह बिनस सी, तित वेला कह सन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जाम। किसै ना देनी भेत, छड़ खड़ोते खिनै माहे, जिन स्यो लगा हेत, हाथ मरोड़ै तन कपे। सियाह हो आसेत, जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। से भादोए नरक ना पाईऐ, है गुर रखन वाला हेत। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन, घनी कोई आन मिलावै माए। संत सहाय प्रेम के, हौ तिन कै लागा पाए। विन प्रभ क्यों सुख पाईऐ, दूजी नाही जाए। जिन्हें चाख्या प्रेम रस, से तृप्त रहे आगाए। आप त्याग बिनती कर है, लेहो प्रभु लाड लाए। जो हार कंत मिलाइया, से विछुड़ कत है ना जाए। प्रभ विन दूजा को नहीं, नानक हार सरनाए। असो सुखी वसंदिया, जिन्हा मया हर राए। कत्तिक कर्म कमावने, दोस ना काहू जोग। परमेसर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन मह कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै, किस थै रोवह रोज। कीता किछु ना हो वई, लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतर है सब वियोग। नानक कौ प्रभ राख, लेहे मेरे साहिब बंदी मोच। कत्तिक होवै साध संग, बिन सहै सबे सोच। मंगिर माहे सुहंदिया, हर पिर संग बैठड़िया। तिनकी सोभा क्या गणी, जे साहिब मेलड़िया। तन मन मौलिया राम, स्यो संग साध सहेलड़िया। साध जना ते बाहरी, से रहन एके लड़िया। तिन दुख ना कबहु उतरै, से जाम कै वस पड़िया। जिनी रावया प्रभ अपना, से दिसन नित खड़िया। रतन जवे हर लाल, हर कंठ तिना जड़िया। नानक बांछै धूड़, तिन प्रभ सरणी दर पड़िया। मंगिर प्रभ आराधना, बहुड़ ना जन्मड़िया। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाहु। मन बिद्या चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा साहु। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहु। बिख्या पोहे ना सकई, मिल साधु गुण गाहु। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाहु। कर गहलीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना विछुड़िया। हो बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाहो। सरम पई नारायण, नानक दर पईया। हो पोख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बक्से वे प्रवाह। माघ मजन संग साधुआ, धूड़ी कारे स्नान। हर का नाम त्याय, सुन सब नानो कर दान। जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना मोहिया, बिन सह लोभ सुवान। सच्चा मार्ग चल दिया, उस्तत करे जहान। अठ सठ तीर्थ सगल पुन, जी दया प्रवान। जिसनु देवै दया कर, सोई पुरख सुजान। जिना मिलिया प्रभ अपना, नानक तिन कुरबान। माघ सुचे से कांडिया है, जिन पूरा गुर मेहरवान। फल गुण आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुन दुखा नाही जाए। इच्छ पुनी वड भागनी, वार पाया हार राय। मिल सहिया मंगल गाव ही, गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै ना लाए। हलत पलत सवार ओन, नेह चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ ना जन्मै ताए। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाही है, जिसनो तिल ना तमाए। जिन जिन नाम ते आया, तिन के काज सरे। हर गुर पूरा आरा दिया, दरगह सच खरे। सर्ब सुखा निध चरण हर, भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाईया, बिख्या नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, पूरन सच परे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंदर एक तरे। माह दिवस मूरत भले जिसका नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहु हरे। माह दिवस मूरत भले जिसका नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहु हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए। घर नाओ निध आवै ताए सब थाई होई सहाए। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाए। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुवासा नाल निबाही तिना समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी
1: वाहेगुरु।
0: आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नू भी छोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान न्योटियां दी ओट धन धन सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है। आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंज बाणियां दे नितनेम अते पावन बाणी बारह महा जी दे पाठ हुए हन। अगाद बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा। दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नूं अपने दरों घरों नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरदार्च करना। महाराज अज असू दे महीने दी संगरांद दा दिहाड़ा है ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪਰਵਾਹ।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया

सोरठ महला पहिला ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म धर्म बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसै नाम विसारी।

संत सहाई प्रेम के हौ तिन कै लागा पाए, विन प्रभ क्यों सुख पाईऐ दूजी नाहीं जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस,

दो तीन मिनट वास्ते नाम नूं सुनना करना जीओ नेत्र कृपा करके बंद रखने गुरमुखां नूं जिन्हां नूं नाम सुनदा उन्हां ने नाम विच ध्यान रखना जिन्हां गुरमुखां नूं शब्द सुनदे उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ जिन्हां गुरमुखां नूं अजे नाम नहीं सुनदा उन्हां ने सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जीओ स्वास अंदर नूं आउंदा वाहे फील करना स्वास बाहर नूं जांदा गुरु फील करना इस तरह अंतरगत होके सिमरन करदे रहना जीओ मन बिरतियां कागर चित करके आपां ने दो तीन मिनट वास्ते बैठना जीओ उस तो उपरंत फिर रसना नाल जपांगे जीओ विचार मारे तरे तारे उल्ट जो ना आए विचारां तो रहत होके आपां ने कोशिश करनी है कि वत तो वत नाम नूं सुनिया जावे जीओ।

महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी। श्लोक महला पहला। वलिहारी गुने अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोड़

सारी संगत प्रथम आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्यार विच सीस चुका के दोनों हाथ जोड़ के सारी संगत प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग परम सन्मान योग पतत पावन

ग्रंथ साहिब जी, आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई साध संगत।

असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए।

प्रेम रास से तृप्त रहे आगाए, आप त्याग विनती कर है ले हो प्रभु लाड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछोड़ कत है न जाए, प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राए, प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की पावन गोद अंदर बड़े अदब सहित सतसंगत दियां घड़ियां दा आनंद माण रही गुरु सवारी साध संगत जी। आप जी ने अस्सू महीने दी कथा विचार बारह महामाज विचों भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी टोरंटो वालिया पासों सरवण कीती है। भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु रहमत करन इसे तरह अपने दरकर दी सेवा लेंदे रहन। सो हुण आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा गुरु चरणा नाल जोड़नगे भाई साहब भाई त्रिलोक सिंह जी पौंटा साहब वाले। इसे तरह बैठ के कीर्तन दा आनंद माणिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हर हर गोर गोर करतारे हर जियो नाम परियो रामदास दीन दयाल कृपाल सुख सागर।

गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी दी साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जियो सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त होई है। गुरु संगत विच बैठ करके अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करके जीवन दे लाहे प्राप्त कीते ने गुरु के कीर्तनिये सिंह साहिबान जी। बहुत ही प्यार विच भिज करके अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करवा रहे सन। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण आवगण ना विचार हो कोई। उदाहरण बहुत प्यार विच सतगुरां ने बख्शी है, माटी का क्या धोप है स्वामी। ध्यान दियो, माटी का क्या धोप है स्वामी, मानस की गत यही। स्वामी तो भाव मालिक जी, सच्चे पातशाह जुगो जुग अटल गुरु साहब जी आप जिया के चरणा च बिने है। माटी, माटी तो भाव मिट्टी। अगर कोई प्राणी मिट्टी नू धोवे तो मिट्टी कदे धोत्या साफ नहीं होंदी। मिट्टी तो मिट्टी रहनी है, जिन्नी वार मर्जी उन्हों धो लो, मिट्टी ता विच पानी पावांगे तो होर चिक्कड़ होवेगा, होर खोबा हो जाएगा, होर गारा बद जाएगा। जे उच पानी पा के तुसी स्याणे समझदार बैठे हो, मिट्टी का ढेर लगा है उहदे ते पानी पाईए भी इह धुप जे, वह धुपेगी नहीं, वह तो गारा बन जाना, होर चिकड़ी बन जानी है। और इन्नी कई बार चिकड़ी बन जाती है जिदों पैर इन्ना तिलके ते बंदा सारे का सारा जाके डिग जाता है। गरीब नवाज जी मेरी बिने है, जिवें मिट्टी धुपद्या धुप नहीं सकती, मानस की गत यही। ये मनुखा जन्म मेरे जन्म की हालत यो जी है, इन्ने औगुण जमा हो गए ने, इन्ने गुणा जमा हो गए ने, वह धोत्या धुप नहीं सकता, मेरा शरीर जड़ा है मिट्टी की तरह हो गया जे। पर तुहाडा बिरद है, कृपा करो दीन के दाते। हे गरीबा नू नवाजन वाले सच्चे सतगुरु जी, अगर तुसी कृपा कर दियो ते तुहाडी कृपा द्वारे सारे जन्मां जन्मांतरां दे पाप जेड़े ने उह कट्टे जांदे ने, धोते जांदे ने, इह शरीर निर्मल हो जावेगा आप जी दी कृपा द्वारे। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हरिहो, ताके ताप तनुक मैं हरिहो। जदों तुसी कृपा दृष्टि करदे हो, फिर अर्ज करा, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरिहो। निहरिहो तो भाव की है, वेखना। जदों तुसी मेहर भरी नजर नाल वेखदे हो, कृपा करदे हो, ता के जिहदे उत्ते कृपा तुहाडी हो जांदी है, तनक मैं हरिहो, ता के ताप उन्हां दियां अधियां व्याधियां उपाधियां तनक शैन विच तुसी खत्म कर देंदे हो। कृपा करो दीन के दाते। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बेधारियो। जदों तुसी कृपा करदे हो सारे दुख खत्म हो जांदे ने। गुरपुर है कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। जदों पूरे सतगुरु जी पूरी कृपा करते ने, फिर लोच तो भाव है इच्छा, फिर सारिया इच्छावां जड़ियां ने पूरिया हो जांदियां ने, गुरु की रहमत वरत जांदी है। तारागी सिंह बहुत प्यार विच यही बोल दोबारा दोबारा लै रहे सी, कृपा करो
दीन के दाते, गरीबां दे दाते, नवाजन वाले गरीबां नूं दीन के दाते मेरा गुण, चाहे मेरे विच कोई गुण है चाहे नहीं है, पर मैनूं इस गल दा तां पता है अवगुण जरूर ने। गुण अवगुण ना बीचार हो, कोई उहदी विचार ना करो, भाव उहदा लेखा जोखा ना करो। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत इही, मेरे शरीर दी हालात ने। तुसी बहुत प्यार विच साहिबां दी पावन कृपा प्राप्त करन वास्ते दूरों नेड़ियों चल के साहिबां दी पावन बारगाह विच सज बैठे हो। अज विशेष करके संगत हाजरी भर रही है क्योंकि अज अस्सू दा महीना जड़ा है उस दी प्रारंभता हो चुकी है। अमृत वेले दी कथा अंदर भी असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए दी विचार होई है, पर अखरी अर्थ फिर जरूर बार जरूर कर लई है क्योंकि संगत आ रही है संगत जा रही है। कुछ सवेरे गुरसिख आए ने, उन्होंने अमृत वेले महीने की कथा बारह माह विचों सरवण कर ली है, कुछ बैठे भी होए ने, कुछ नवे आ रहे ने, कुछ नक मस्तक करके वापस भी परत रहे ने। रुझेव्या भरी जिंदगी है। तो अज गुरु अर्जन देव महाराज ने इस महीने द्वारे पावन उपदेश बख्शिश किया है भी जिन्हों के अंदर प्रेम का उत्साह पैदा हो गया है उन्होंने अंदर एको ही तांग होंगी है, मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावै माए। हे मेरी मां, कोई ऐसा है जड़ा मैनू प्रभु परमात्मा नाल मिला देवे, कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पै आप वेचाई दर्शन हर देखण कै ताई, कोई है ऐसा मेरा प्यारा। कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों बको सुब रसना दीजै प्राण अकोर, मिल मेरे प्रीतमा जियो हों तुद बिन खरी ने माणी, मैं नैणी नींद न आवै जियो भावै आनण पाणी, कोई आन कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा राम, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चल लै जियो, कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा। कोई है ऐसा मेरे अंदर प्रेम का उत्साह लगा है अस्सू दे महीने द्वारे। गरीब निवाज कृपालू जी अपार कृपा करते ने, प्रेम उमाहड़ा क्यों किवें केड़े ढंग दे नाल उस प्रभु परमात्मा दे दीदार हो सकते ने, वो केवल गुरु दे नाल प्रेम है। जिन्हां दे अंदर प्रेम की प्रीति है उन्हां दी प्राप्ति हो जाया करती है। आया सुनिया बिदर द बोलै दरजोधन होए के रुखा, घर असाडे छड के गोले दे कर जाए के सुखा, भीखम द्रोणा करन तज सभा सिंगार वड्डे मानुखा, झुंगी जाए वलाए ओण सभना दे जी अंदर धुखा, हस बोले भगवान जी सुनो राजा होए सन मुखा, तेरा भाव न दिसई मेरे नाही अपदा दुखा, भाओ जवेहा बिदर दे होरी दे चित चाओ न चुखा, गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। तुहानू याद आ जाएगा अज तो तीन चार दिन पहला एक भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का आपां कबित सांझा कीता सी, जिस दे विच मठियाई दी बात कही सी भी कीड़ियां मठियाई जिथे होवे मिठा होवे अपने आप आ जांदियां ने। ਉਹ ਕਵਿਤ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਗਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਤੰਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੌਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਵਿਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਰਾਖੀ ਹੈ ਛੁਪਾਏ ਜਤਨ ਕਹਿ,
ਚੀਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਚੀਣ ਤਾਂ ਹੀ ਲਪਟਾ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਵਿਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਰਾਖੀ ਹੈ ਛੁਪਾਏ ਜਤਨ ਕੈ, ਚੀਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਚੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਪਟਾ ਤਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਜੈਸਿਆ ਰਾਖੀ ਹੈ ਦੁਰਾਏ ਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੰਗ ਤਾਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਓਹਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਤੰਗਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਜੈਸੇ ਰਾਖੀ ਹੈ ਦੁਰਾਏ ਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਜਲ ਕਮਲ ਇਕਾਂਤ ਵਸੈ, ਮਤ ਕਰ ਮਦ ਅਚਵਣ ਤਹਿ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟਤ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਤੈ ਦੁਆਰ ਬਿਲ ਲਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਅਗ ਮਰ ਚੱਲੀਏ,

बिनती कर लेहो प्रभु लड़ लाए। हे गरीब नवाज अपने लड़ नाल लालो। तुहानू एक छोटी जी गाथा सुनावा। सवेरे मैं टोक मात्रे की अर्ज की सी, जिस वेले गुरु हरगोबिंद महाराज सचे पातशाह ग्वालियर के किले विच सुभाईमान हो गए ने, दरोगा हरदास जिहड़ा है छेवें पातशाह जी के चरणों का भौरा बन गया। सतगुरु महाराज की कृपा वरती है, ग्वालियर का ऐसा किला है, बड़े बड़े तकड़े थंभ सन, अज भी मौजूद ने थंभे जिन्हां नाल राजियां नूं हाँ जी बन्निया होया सी, जकड़िया होया सी। पर जिस दिन का मेरा मीरी पीरी का बापू मालक चला गया, उस दिन ते उस किले दे विच रौनकां लग गईआं, जेल दे विच रौनकां लग गईआं। दो टाइम सत संगत हुंदा है, जिहड़े उह राजे जिन्हां ने अपने अंदर ये गल पक्की कीती सी भी साडी जिंदगी दे सवास जिहड़े ने, साडे जिंदगी दे सवास जिहड़े जो दित्ते ने इस किले विच ही खत्म होने ने, सानू इत्थों किन्नों रिहा करना है, साडी मौत है। पर जिस दिन तो छेवां बापू मेरी पीरी का मालक सचे पातशाह किले विच सुभाईमान हो गए, उन्होंने एक अनोखी जिंदगी मिल गई, एक नवा जीवन मिल गया। जीवन का आनंद ऐसा आया, वो आपस में गल्लां करदे ने भी जिस वेले असी अपना राज भाग कमाउंदे सी, जिस वेले असी राज भाग कमाउंदे सी, साडा हुक्म भी चलदा सी, असी समझदे सा आनंद बड़ा है। पर जिहड़ा अज आनंद है उस आनंद नाल उस राज दी भी तुलना नहीं कीती जा सकती, बराबरी नहीं कीती जा सकती। है तां उह राज सी, पर अज जिहड़ा आनंद बन रहा है ना जेल दे विच, किले दे विच, है जेल है, बड़ी खतरनाक है, जिस खाणियां दे विच जहर मिलाया जांदा सी, कहिंदे अज ते आनंद बन गया। समा जदों लंघिया, सतगुरु महाराज नूं रिहा करन दी बात चली है, मीरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह जी ने जेल चो बाहर आना है, तां उन्हां राजियां नूं पता लगा भी छेवां पातशाह गरीबां नूं नवाजन वाले जा रहे ने। उन्हां ने आपा भाव तां पहलां ही छड्डिया सी, साहिबां दे चरणां च आ के ढेरी हो गए। ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। सतगुरु जी सानू छड़ के तुसी जाओगे? गरीब निवाज दो टाइम असी गुरु गुरु दे जाप नू जपदे हां, कड़ा प्रसाद जी दियां खुलियां देगा मिलदियां ने, पदार्थ मिलदे ने, तां सतगुरु महाराज ने जदों उन्हां दा प्रेम देखिया तां सच्चे पातशाह जी ने मुबारक रसना तो बचन कहे सी, तुसी मेरे नाल ही चलोगे। ते साहिबां ने बचन कर दिते सन, जिन्ना चिर ये नहीं जाते असी नहीं जावांगे। तां राजे लोग सियासती लोग हुंदे ने, जहांगीर ने एक नुकता सोचिया भी इन्नी क गल कह दें भी जिहड़े तुहाडे पल्ले नूं पकड़ के अज भी वह चोला जिहड़ा है कुढ़ाणी साहब नगर लुधियाने दे लागे साहिबां दा मौजूद है, दुनिया के लोग संगती रूप में दर्शन की दार करते हैं, बेशक वो बिरध हो चुका है। तो गुरु खालसा जी उन्हें तो यह सोचा सी भी दो चार पांच छे जने निकल आउणगे, कहिंदा जी जिन्ना तुहाडा पलड़ा पकड़ के निकल जाण उन्हां नूं रिहा कर दिओ। मेरे गरीब निवास सच्चे पातशाह जी पंजाह कलियां वाला चोला संवाल लिया जी, पंजाह कलियां वाला दरोगे नूं हुक्म किया। तां सतगुरु महाराज ने बचन किया भी एक एक कली जिहड़ी है साडे चोगे दी फड़दी जाओ। राजे एक दूजे नूं धक्का मार के अगाह हो रहे ने, किधरे मैं पिछे ना रह जावां, किधरे मैं रह ना जावां, भी कलियां इन्नियां ने रह ना रह जावां। जिस वेले एक दूजे नूं धक्का मारदिया मारदिया पंजाह राजियां ने चोलियां दीआं कन्नियां पकड़ लईआं तां दो रह गए। आखो सतनाम श्री, दो रह गए, पैरां नूं बेड़ियां सन। देखो मेरे गरीब निवाज, दस्तगीर होए पंज पीर, हर गोबिंद हर अतोला, दीन दुनी दा पातशाह पातशाह अडोला। तां सच्चे पातशाह जी जिस वेले सिपाही उन्हां दोनां नूं पछां तकण लगे
ਤੇ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਪਿਛਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਗੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜਨੇ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਣੀਆਂ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀਆਂ 50 ਕਲੀਆਂ ਸੀ, 52 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਨਹੀਂ, ਆ ਦੋ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜਿਓ।

मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम, तुमरी कृपा मैं सुख कोई ना जानी, तुमरा उचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरा सुतर, तुमते होए सो तुमरी गत मेत, नानक दास सदा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओवंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाये वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ, श्री हर आए श्री हर किशन ते आईया, जिस डिठा सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिया घर, नौन दया वै ताई सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तरखे। बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां चनाहा नाम जपया, वंड छकिया देख चलाई, तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तनहा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सही दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई, कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुवासां संग निभाही, तनहां दी कमाई दा ध्यान तरके। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी कहो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवै चेता मन का सदका, सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रचिया रियायत, देग तेग फतह बिरद की पैच पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाये खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, बबेक दान विसाह दान परोसा दान, दाना सिरदान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवां, मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधामां, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। तनहा दे खुले दर्शन दीदार, ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है जी। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, आप जी दी हजूरी अंदर शुभ आनंद का लड़का भाई प्रतपाल सिंह गिल, पिता सरदार महेंद्र सिंह गिल ते माता मनजीत कौर जी गिल, लड़की बीबा कुलजीत कौर खोसा, सपुत्री सरदार दर्शन सिंह खोसा ते माता रजवंत कौर खोसा, तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए।
ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਸ ਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢੱਕਣੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰਹੀ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हर कीरत तत बिचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कछ ना बीचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बीचारे।

बने प्रेम दी कंड कदे ना खुले ओ मुख दे विचों निकले अखर बन जावन अणमुले।

0: बख्शी खुशियाँ खेड़े,
1: हाँ
0: बख्शी खुशियाँ खेड़े,
1: हाँ
0: बख्शी खुशियाँ खेड़े।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा सारयां दा। अंत दे विच इह सुभाग जोड़ी प्रितपाल सिंह जी ते कुलजीत कौर सतगुरां दे चरणां च अरदासां बेनतियां करदे। बच्चो तुसीं सदा खुश रहो, आउण वाला हर पल तुहाडा खुशियां भरिया होवे, एक दूजे दे साई जीवो, यही अरदासां बेनतियां करदे आं। तो अंत दे विच फिर बेनती करदे आं कि गिल परिवार ते खोसा परिवार की एक कुड़माचारी रहिंदी दुनिया तक बनी रहे। सो दास दा ढाडी जथा मेरे इस पासे भाई जस्सी सिंह हमीदी बरनाले दे लागे, मुंडा किस्मत सिंह बीला इस माइक दे उत्ते गा रहा सी, ए वी बरनाले दे लागे आ। सरंगी मास्टर भाई रणजीत सिंह लखा जगरावां दे लागे, ते दास ज्ञानी बलबीर सिंह बिहारीपुर वाले रेल कोच फैक्टरी कपूरथले दे लागे मेरा नगर है। सो 15-16 दिन तो असी सेवावां इत्थे निभा रहे, तो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: ये सन गुरु घर का ढाडी जत्था ज्ञानी भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वाले, जिन्होंने ब्याह के संबंध में कविता श्रवण कराई है, तिन्हां दा परिवारां वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण इत्थे ही ब्याह के समागमां की समाप्ति है, कड़ा प्रसाद की देग वरताई जा रही है। उस तों बाद तुसी जो सगन है मेन हाल दे विच लड़के लड़की के माता पिता ने पाउणा है, बाकी संगत ने सगन इत्थे नहीं पाउणा, बाहर टेंट विच पाउणा है, नाले उत्थे तुसी लंगर छकना है। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सुबह पढ़ के आ जा पांपड़ पढ़ के सुन के सुबह पढ़ के आ जा पांपड़ पढ़ के।

हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका भौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी।

घट घट के पट पट की जन जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जेते बदन सृष्ट सब धारै।

संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम

दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार।

संत सहाई प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। आप त्याग विनती कर है ले हो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछोड़ कतह न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं नानक